0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। देखिए भाई, लोगों का काम है बात करना, बोलना। वो आपके अच्छे वक्त में भी बोलेंगे और बुरे वक्त में भी। बस ये अलग बात है, अच्छे वक्त में चेहरे बदल जाते हैं और बुरे वक्त में असलियत सामने आ जाती है। वक्त ने मुझे अच्छे से ये बात समझा दी और इसीलिए अब कौन क्या कहता है इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं होती और ना ही हर बात पर जवाब देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही अपना जवाब दे देती हैं। तो बस मैं मस्त रहती हूँ और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीती रहती हूँ, क्योंकि बाबू मशाए लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए। और वो नहीं कहेंगे तो क्या हम कहेंगे, या वो अपना काम भी ना करें ठीक से। आइए एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ इसी बात पे और सुनते रहिए ठापंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम।

सो बात करते हैं अभी इरिटेटिंग लोगों की. हम सबकी लाइफ में जो लॉयल लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं. वो आपको फोन करेंगे, 10 बार आपको कॉल करेंगे, 10 बार मैसेज करेंगे, आपसे पूछेंगे कुछ खाया कि नहीं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं. एक्चुअली उनके पास और 7 लोग नहीं है ना जिस पर वो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे पाए. उन्हें सिर्फ आप पर कॉन्सेंट्रेट करना है, अकेले आपके बारे में सोचना है, और इसलिए वो अक्सर इरिटेटिंग बन जाते हैं आपके लिए. अक्सर वो आपकी परेशानी बन जाते हैं या आप उनसे दूर भाग जाना चाहते हैं. आपको लगता है यार इस बंदे का कॉल मेरे पास इतना ज्यादा क्यों आता है, ये मेरी जिंदगी को होल्ड कर रही है, ये मतलब एक अलग सा अधिकार दिखा रही है मुझ पर. लेकिन एक्चुअली वो बंदा या वो बंदी जो है वो आपके लिए लॉयल है, वो चाहती है कि इस रिश्ते की खूबसूरती जो है वो बने, या वो बंदा जो है वो चाहता है कि यार साथ हमारा मजबूत रहे, और सिर्फ आप ही हैं उसके इस साथ को निभाने वाले, इसलिए भी ऐसा होता है. आइए फिलहाल समझ में आ गया होगा आपको, हम प्ले करते हैं आपके लिए अगला गाना. हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

सुबह सुबह ये बात बड़ी ऑकवर्ड सी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास जिंदगी का सिर्फ एक आखिरी घंटा बचा है, आखिरी घंटा, हाँ, और इस आखिरी घंटे में आप अपने परिवार के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा किसी एक और शख्स से मिल सकते हैं, तो आप किसे चूज करेंगे? नहीं, मतलब सोचिए कि सबसे पहला नाम आपके दिमाग में किसका आएगा, आपकी फैमिली के अलावा, हाँ। और जैसे ही आपके दिमाग में ये नाम क्लिक करे, जरा ये बात सोचिए कि क्या अगर उससे भी यही सेम सवाल किया जाए तो उसके जहन में भी सबसे पहला नाम आपका आएगा? अगर ऐसा है कि उसके जहन में भी आपका नाम आएगा, आप उसकी प्रायोरिटी हैं, तो आप बहुत लकी हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको भी अब इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि भाई अभी आपकी जिंदगी का ये आखिरी घंटा नहीं है, आपके पास अभी लाइफ पड़ी है। सोचिए कि जो लोग आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी रखते हैं, क्या आप भी उनकी जिंदगी में प्रायोरिटी उतनी ही रखते हैं? सदाक्षी के साथ सुन रहे हैं आप इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

वल जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस पता है क्या है कि हमने अपनी जिंदगी कई बार लोग क्या कहेंगे इस नाम पर कर दी। क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हर फैसले से पहले दुनिया का सोचा। और फाइनली फिर समझ में आया कि हमें जिन लोगों की राय की इतनी फिक्र थी उन्हें तो हमारी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं था। सो बाबू मोशाय, जिंदगी छोटी है इसलिए लोग क्या कहेंगे से पहले खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। और सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ रीटू ब्रिस्वानी 1701 एफएम पर।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

सो मैं बात करती हूँ उनसे जो आज कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले जाते ही वो फोटोज क्लिक करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाते खाते भी बात नहीं करते एक दूसरे से, स्टोरी लगाने पर ध्यान देते हैं, डीपी चेंज करने पर ध्यान देते हैं, कैसे आपके घूमने का व्लॉग बन पाए आप इस पर फोकस करते हैं। यू नो आज हम लाइफ को जीने से ज्यादा लाइफ को कैप्चर करने पर भरोसा कर रहे हैं, इनफैक्ट कर ही रहे हैं, है ना। हम लम्हे एक दूसरे के साथ नहीं बिता रहे, हम नकली हंसी हंस रहे हैं, हम नकली मोमेंट्स जी रहे हैं। एक्चुअली आप कितनी ही खूबसूरत जगह पर चले जाएं, आप उसका मजा नहीं लेते। पहले हम कहते थे ना कि आप अगर माउंटेन्स पे जाएंगे, आप पहाड़ों पे जाएंगे, आप शांति में जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन आज हमारे साथ साथ जो हमारा कैमरा जाता है ना, वो हमें शांत रहने कहाँ देता है। हम फोटोज क्लिक करते रहते हैं, हम डीपीज चेंज करते रहते हैं, हम हर एक चीज को कैप्चर करना चाहते हैं, उस खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने का जितना हमें क्रेज है उतना उसको खुद देखने का क्रेज नहीं है। कई बार तो आप फोटोज तो ले लेते हैं और आप लौट आते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि वहां पे छोटी छोटी चीजें कैसी थी, कितनी खूबसूरत थी जो आप उनको एंजॉय कर पाते। सो लाइफ को कैप्चर करना बंद करिए और जीना शुरू करिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्फानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

सुबह ये था आज का इट हैपेंस पर मेरा आपका एक और साथ। तो कुछ गहरी बातों जज्बातों के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी कल सुबह इसी इट हैपेंस में। आज के सफर से अब ये वक्त है विदा लेने का, तो अपना ख्याल रखिए, जिंदगी को जीते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाते रहिए। मैं मिलूंगी कल एक बार फिर से आपसे इट हैपेंस में। याद रखिए कि जिंदगी जो है वो सिर्फ आगे बढ़ने का नाम है, थमने का नहीं। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.4 FM ते जीआरजे संदेश शलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है मेरी पसंद है सब दी पसंद है रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.4 FM साडे फेसबुक पेज है जी बसवानी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगता है वो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वान इवन सनो वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट है कि है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, ता जे फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि है वह फ्लॉप हुंदी है। ते एवरेज फिल्म कि हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है ते मामूली मुनाफा कमाती है, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है कि है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
3: अरे वाह, इनका पता बताना.
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई की। अजकल फिल्मां रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है, जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होती है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है, पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

उम्मीद हैगी है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है, बेशक को कोई भी बॉलीवुड की देखते हो, टॉलीवुड की देखते हो, हॉलीवुड की देखते हो, साउथ की देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जानी, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी वन सनो एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो बिसवानी एट बिसवानी डॉट कॉम साथ ईमेल आई डी है, जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, सा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच आग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone.

0: Tuning into Radio Biswani. This is Shahrukh Khan.
1: Hi, this is Ajay Devgan. और आप सुन रहे हैं Radio Biswani.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनीबैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, वेडनेसडे का दिन है, मिड वीक आ गया है और फीलिंग्स जो हैं वो मिक्स्ड हो सकती हैं, मतलब थकावट भी हो सकती है लेकिन जो एंथुजियाज्म है वो भी हो सकता है। थकावट किस लिए? क्योंकि ऑफकोर्स मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे भर भर के काम किया है। और एंथुजियाज्म क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वीकेंड की ओर हम जा रहे हैं और खुशी मनाने का तो हमें बहाना चाहिए, राइट? चलिए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा होती है एक बहुत ही हेल्दी रिचुअल के साथ और वो हेल्दी रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। नाउ व्हाई वी डू इट? बिकॉज हमें हेल्दी रहना है इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, ताकि हम सारे डिसीजंस अच्छे से लें, सारे काम को अच्छे से कर पाएं। ये हमें अच्छे से प्रोडक्टिव बनाता है और सारे डिसीजंस अच्छे से काम शांत मन से लेने में हेल्प करता है। सो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो आप भी ट्राई कीजिए, बिकॉज यू आर गना फील सो सो सो गुड। जी हाँ, यहां पर सबसे पहले जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है और ये है मुंजिया मूवी का गाना। 2024 की काफी बड़ी हिट मूवी थी ये और इट्स अ हॉरर कॉमेडी। और अगर आपने नहीं देखी है तो ट्राई कीजिएगा। इंसानों की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक एनिमेटेड कैरेक्टर जिसने आपको एंटरटेन करने की कोशिश की है वो कुछ ज्यादा ही कामयाब हो गया इसमें। सो आइए तेनो खबर नहीं, आपको सुनाते हैं फ्रॉम द मूवी मुंजिया और करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो मौसम क्या कह रहा है, मौसम का क्या प्रोग्राम है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनेगी, उसके बिना प्लानिंग्स नहीं होंगी, और उसके बिना हमारे प्लान्स पर पानी भी फिर सकता है, बारिश का पानी। जी हाँ, सो आइए सबसे पहले प्रोग्राम में मौसम की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 23.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 22.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने के चांसेस हैं, और वहीं 20% चांसेस बारिश के भी हैं, जो कि मुझे होती हुई नजर आ रही है कुछ इलाकों में, जो कि 14% इलाका है हमारे शहर का। सो अगेन, ये बारिश जो है फिर आगे नहीं मुझे होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ अभी अभी कुछ इलाकों में हो रही है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और बात की जाए थर्सडे यानी कि कल की एंड फ्राइडे की, तो थर्सडे को 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, पूरी तरह खिलखिलाता हुआ सूरज आपको नजर आने वाला है, और उसका मतलब यही है कि वो जो स्प्रिंग की एक खूबसूरत जो है दिन है वो आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ फ्राइडे की अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ थोड़ी सी क्लाउडी सिचुएशन रह सकती है, और 10% चांसेस है बारिश होने के। सो बेसिकली आज सच बहुत बारिश मुझे नहीं दिख रही है, या बारिश होती हुई भी मुझे इनफैक्ट थोड़ी बहुत ही नजर आ रही है, वो भी बीच बीच में कुछ इलाकों में। उसके अलावा दोनों ही दिन आपको सूरज मिलने वाला है, फ्राइडे को थोड़े बादल हो सकते हैं, उसके अलावा साफ बढ़िया है। जी हाँ, बढ़िया है, स्प्रिंगी स्प्रिंगी फील कीजिए, क्योंकि स्प्रिंग है भाई, और स्प्रिंग अपने साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है। माइंड यू, आई एम नॉट लाइंग हियर। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया है, तो अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, यानी कि वो गाने जो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप रिकमेंड करते हो और कभी कभी किसी को डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल भी फील करवाते हो अपने नियर एंड डियर वंस में। सो व्हाट आर यू गोना डू? जी हाँ, वो करने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी चीज करनी है और वो है अपना फोन उठाना है और फोन उठाकर आपको नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, थोड़ा सा पिंगा कर लिया जाए यहां पर।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितना लंबा जीना चाहते हैं। जी हाँ, मतलब ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, मतलब बहुत ही जेन्युइन तो नहीं, पर बिजारे क्वेश्चन जरूर लग रहा है ये। वेल अगेन, मैं आपसे फिर से पूछूंगी कि आप कितना लंबा जीने की ख्वाहिश रखते हैं। आप लोग बोलोगे कि जब तक जीना चाहेंगे हेल्दी रहना चाहेंगे, मतलब हेल्दी रहना चाहते हैं जब तक जीना चाहते हैं। ये जो बाद में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है बीमारी या किसी भी तरह की इलनेसेस जो हैं, उनसे अच्छा है कि हेल्दी रहो जब तक जियो, बिकॉज दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स सेज, दैट्स व्हाट माय नियर एंड डियर वन सेज, और वही मेरे घर के जो एल्डर्स हैं वो कहते हैं कि बेटा जब तक जिए बस हेल्दी रहे, चलते फिरते रहे, यही चाहिए हमको। बहुत लंबी उम्र नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि एक कंट्री है इस दुनिया में जहां पर 1,00,000 से ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर के हो गए हैं, मतलब 100,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो 100 साल से ऊपर के हो गए हैं। आप गेस करना चाहोगे कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है? कीजिए। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट जापान। जी हाँ, सो जापान ने ये रिकॉर्ड बना दिया, मतलब मोर देन 100,000 पीपल आर ओवर 100 ईयर ओल्ड इन जापान राइट नाउ एंड दे आर हेल्दी। द फैक्ट दे आर स्टिल हेल्दी, मतलब 100 साल से ऊपर होने के बाद भी वो हेल्दी है। नाउ यू आर गोना से ऑफकोर्स दैट्स इम्प्रेसिव बिकॉज दैट्स हाउ इट शुड बी। हेल्दी रहो, लंबा जियो, यही तो चाहिए सबको, राइट? एवरीवन वांट्स दैट। वेल ऑफकोर्स, लेकिन उसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज से थोड़ी सी परेशान हो गई। आप लोग बोलोगे हैं बड़े खराब लोग हैं, मतलब बड़ी खराब गवर्नमेंट है, इतनी अच्छी चीज के लिए बुरा कैसे फील कर सकती है? वेल बिकॉज जापान में 100,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो ओवर 100 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन वहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहा है, पॉपुलेशन जो है रेट है वो भी गिर रहा है, मतलब लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे। फर्टिलिटी रेट से ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन रेट जो है वो गिर रहा है, मतलब लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, कपल्स बच्चे पैदा नहीं कर रहे। जापान की गवर्नमेंट जो है वो नई नई स्कीम्स निकाल रही है। नाउ आप लोग बोलोगे कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम जो है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं अगर वो लंबा जी रहे हैं तो उससे नए लोगों का क्या लेना देना, मतलब नए लोग क्या करेंगे इसके बारे में? वेल क्योंकि इतने सारे लोग जब इतनी उम्र के हो जाएंगे तो कंट्री को बहुत ज्यादा पेंशन्स जो है वो देनी पड़ती है, और जापान जो है वो ऑलरेडी काफी पेंशन्स दे रहा है, लेकिन वहां पर यंग लोग नहीं है इतना काम करने के लिए जिससे वो पेंशन्स जो है वो जनरेट हो सके। उनकी इकोनॉमी भी जो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से सफर कर सकती है अभी कुछ टाइम में, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन रेट है वो काफी गिर गया है। अब ऐसे में नए लोग पैदा नहीं होंगे, नए लोग काम नहीं करेंगे, तो जो ओल्ड हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं जो कि अब पेंशन्स पर हैं, रिटायर्ड हैं और वो लंबा जी रहे हैं, उनकी पेंशन्स कहां से आएंगी? सो या, लंबा जी रहे हैं लोग क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी है। जापानी लोगों का सबसे बड़ा फॉर्मूला पता क्या है कि वो कभी भी अपने खाने से धुआं नहीं निकालते हैं, जो कि हम सब करते हैं। जी हाँ, एंड दैट इज द फैक्ट। वो अपने खाने को इतना ही पकाते हैं कि उससे धुआं ना निकले, और वो उसे वैसे ही खाते हैं। आप लोग बोलोगे कि हम तो जब तक धुआं ना निकले तब तक चैन ही नहीं लेते। या दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट हैपेंस इन माय house also, so of course I know, but the thing is ki that is what makes Japanese people so strong, so healthy even after 100। जी हाँ, सो अपने खाने को अच्छे से खाइए, और जापानी लोगों का तो ये भी कहना है कि हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, बहुत सारी फिश खाते हैं, बहुत सारा राइस खाते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन। पहले ऑफकोर्स द जेनेटिक्स ऑल्सो प्लेज बिग रोल। जापानी लोगों के जेनेटिक्स हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, पर उनकी जो हैबिट्स हैं वो आज भी बहुत ज्यादा अच्छी, एंड दैट इज द रीजन पीपल आर लिविंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਜਾਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे हनिया श्रीनिव्या के साथ। दोस्तों, कल ही की बात है, मैं एक चीज के बारे में पढ़ रही थी और उस चीज को पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइजेशन होता है कि हमारी जो इंडियन हेरिटेज है, जो साइंसेज, कितनी ज्यादा अपने वक्त से आगे रही है। जी हाँ, एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा, एंड वेन आई से हमारा यानी कि हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करें, जो साल होता है हिंदुओं के हिसाब से, हिंदूज के हिसाब से, वो शुरू होता है अप्रैल में। जी हाँ, नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ हिंदू कैलेंडर जो है दैट मेक सेंस और वो, बट ये क्यों सेंस बनाता है, आई एम गोना इस कल ही की बात है। और मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी जो है वो इन्फ्लुएंसर आती हैं और वो इसके बारे में बात कर रही थी और वो बता रही थी कि कैसे हमारे सारे के सारे सिस्टम को चेंज कर दिया गया और हमें पता भी नहीं चला। उन्होंने बताया कि कैसे 13 नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कि हमारे कैलेंडर में 13 यानी कि 13 मंथ होते हैं, हमारी जोडियक्स जो है वो 13 होती है, हमारे लूनर साइकिल्स भी 13 होते हैं, बट नोबडी टोल्ड अस दैट। जी हाँ, किसी ने हमें ये नहीं बताया, बल्कि हमें जो बताया गया वो ये था कि न्यू ईयर शुरू होता है डेड ऑफ द विंटर में, जो कि लिटरली दिसंबर के बाद जब जनवरी शुरू होता है तब। मतलब आप खुद सोचिए कि नया साल तब कैसे शुरू हो सकता है जब बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म हो रही हैं। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं व्यास शर्मा, मतलब अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कुछ जगहों पर दिसंबर और जनवरी में जो है वो डेड ऑफ द विंटर होता है, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, समर्स होती हैं। या यू आर राइट इन दैट वे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो डेफिनेटली आपकी बात पते की है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो डेड ऑफ द विंटर यानी कि जनवरी में नया साल शुरू होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो साल शुरू होता है अप्रैल में। एंड ये चीज हिंदू सभ्यता में, और छोड़िए हिंदू, भारतीय सभ्यता में लोग बहुत पहले से, जो हमारे जो बड़े बड़े ये ऋषि मुनि हुए हैं, वो चीज पहले से फॉलो करते आए हैं। और ऐसा ही यही, मतलब दैट वॉज द रीजन कि वो बहुत पहले ही प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते थे, उन्होंने वो चीजें कर दिखाई जो पूरी दुनिया को करने में इतना ज्यादा वक्त लगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि क्यों 13 नंबर को इतना ज्यादा बुरा बनाया गया कि 13 नंबर इज नॉट गुड, यू नो इट्स अ अनलकी नंबर, बिकॉज हमें हमारी इन यू नो व्हाट अच्छी चीजों से दूर करने की कोशिश की गई। नाउ किसने इसे चेंज किया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी हाँ, सो ग्रेगरी द पोप, जी हाँ, उन्होंने इसको मिस बैलेंस किया। जी हाँ, उन्होंने इस कैलेंडर को जो है वो चेंज किया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक टैक्सेस, और इसीलिए उन्होंने इसे चेंज कर दिया। या 13 महीनों से 12 महीने कर दिए गए, कैलेंडर को चेंज कर दिया गया, और वो छोड़िए जनवरी से शुरू कर दिया गया साल को, जबकि साल की शुरुआत होती थी अप्रैल से। हमारे लूनर साइकिल्स 13 है, बट किसने हमें बताया? जी हाँ, हमारे जोडियक्स भी 13 है, बट किसने हमें बताया? हमारे मंथ्स भी 13 है, लेकिन किसने हमें बताया? And I was like, yeah, that's so so so true, बट ये किस लिए किया गया? Well, एक मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए किया गया, ताकि हम उन्हीं चीजों को कर सके, वही चीज फॉलो करें जो कि वो लोग हमें फॉलो करवाना चाहते हैं। कैसे हमने अपनी सारे आइडियाज को छोड़ दिया, हम भूल गए और हम उन्हीं के इशारों में चलने लगे। और उन्होंने ना एक वो जो उसके बारे में बात कर रही थी, शी इज अ वेरी वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंसर, एंड यू नो व्हाट, वो इस बारे में कॉन्शियसनेस और इसके बारे में बहुत कुछ बात करती है। सो शी वाज लाइक कि हमें वो हैमस्टर इन द व्हील की तरह बना दिया गया कि बस हमें ना मतलब वही करना है, हमको पैसे कमाने हैं, हमको अपनी जिंदगी को जो है वो चलाना है, हमको दाना पानी खाना है, और वो, लेकिन हमारी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है और हम उस एनर्जी से क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हमसे छीन लिया गया। लेकिन पहले के लोग हवा में उड़ भी लेते थे अपनी एनर्जी के बल पे, और आज भी कर लेते हैं। लाइक देयर आर मेनी पीपल, आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस और एनर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया गया कि हमको काम करना है, हमको खाना खाना है, फिर से काम करना है, फिर से खाना खाना। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रॉन्ग थिंग, बट हम अपनी एनर्जी, जो कि सच में द एलीटेस्ट ऑफ एनर्जी है ह्यूमंस के पास, उससे क्या क्या कर सकते हैं, किसी ने हमें नहीं सिखाया। इनफैक्ट जिनको आता था उन्हें भी भुला दिया गया। इसके साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, ऐसे किस्से आए थे आप में से किस किस को नॉर्दर्न लाइट्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, और क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी नॉर्दर्न लाइट्स देखी हैं? जरूर हमें बताइएगा, बिकॉज आई लव देम. मुझे अभी तक देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आई वुड लव टू वॉच देम, एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू व्हेन आई एम गोना सी नॉर्दर्न लाइट्स, बिकॉज आई थिंक दे आर सो मैजिकल. बट ऑफकोर्स आपको बहुत ठंड में जाना पड़ता है, और उस ठंडी ठंडी जगह पे जाकर उन नॉर्दर्न लाइट्स को एकदम रात में स्पॉट करना पड़ता है. एंड ऑफकोर्स ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कुछ कंट्रीज में आपको देखने को मिलती हैं, लाइक स्वीडन, लाइक नॉर्वे, यू नो, लाइक नीदरलैंड, फिनलैंड, ये कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलती हैं, और पार्ट्स ऑफ कैनेडा ऑल्सो, कुछ कैनेडा के पार्ट्स में भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं. नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स? बिकॉज एक बड़ी ही दिलचस्प चीज जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. जी हाँ, एक टूरिज्म बिजनेस जो कि स्वीडिश लैपलैंड में है, वो लिटरली ढूंढ रहे हैं कुछ वॉलंटियर्स को टू स्पेंड द सीजन सराउंडेड बाय स्नोई फॉरेस्ट, रेंडियर एंड नॉर्दर्न लाइट्स. जी हाँ, वॉलंटियर्स मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट यू कैन लिव देयर. नाउ व्हाई वॉलंटियर्स? बिकॉज ऑफकोर्स ये बिजनेसेस जो है वो आपको फ्री में वहां पर रखेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फ्री में वहां पर रहने का मौका मिलेगा, रेंडियर्स देखने को मिलेंगे, आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेगी, वो मैजिकल पूरा का पूरा माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको जो है वो जो लोग हैं जो वहां पर आएंगे टूरिज्म के द्वारा, वहां पर उनका थोड़ा ख्याल रखना है. जी हाँ, ओकेजनली जो है वो रेजिडेंट अरवेंडियर का भी ख्याल रखना है. जी हाँ, प्लेसमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगी, उन चीजों का ख्याल रखना, बेसिकली थोड़ा बहुत आपको ख्याल रखना है. यू आर नॉट डूइंग एग्जैक्टली जॉब, बट आपको कुछ कुछ काम थोड़े बहुत करने हैं, और इसके लिए वो आपको मील्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको फ्री में रहने के लिए अकोमोडेशन देंगे, मतलब आपको इग्लू में रहने का मौका मिलेगा, वही इग्लू जहां पर रहकर आप खूबसूरत तरीके से नॉर्दर्न लाइट्स को देख पाओगे. आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा कहां से लाती हो तुम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन? वेल, आपको पता ही है, अगर मैं आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाऊंगी तो कौन पहुंचाएगा? जी हाँ. सो अगेन ये जो है ये आपको इसके लिए जो एप्लीकेशंस जो है वो भरनी पड़ेंगी, और इसका सारा का सारा जो है वो क्या रोल है वो आपको देखना पड़ेगा खुद ही. बट ओवर एंड ऑल यहां पर ये मौका जो है वो बहुत ही जबरदस्त है. नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट द थिंग इज की मतलब मैं जा रही हूँ घूमने और मुझे वहां पर रहना है, मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, मुझे फ्री में खाना मिलेगा, मुझे फ्री में अकोमोडेशन मिलेगी. हाँ, मुझे थोड़ा बहुत काम करना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बिकॉज वॉलंटियर की तरह काम करना है, बट इसके अलावा सब कुछ अच्छा है. या मतलब आई थिंक इट्स ग्रेट. राइट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio ब्रिसवानी, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
13: To everyone tuning into Radio ब्रिसवानी, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
15: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार जेनिविया के साथ। दोस्तों कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और आपको तो पता है मीम गेम जो है सोशल मीडिया पर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि क्या ही बताएं, इतनी स्ट्रांग तो हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं वो भी नहीं होती। सो मीम गेंग इज गोइंग स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया, और वहीं पर मेरी आंखों के सामने भी एक मीम आता है और वहां पर लिखी होती है एक बात जो कि लॉजिक बना रही थी, और मैंने सोचा कि अगर इतनी ही लॉजिक बना रही है तो आपसे भी पूछा जाए और आपका क्या जवाब होगा वो भी बताया जाए। सो यहां पर लिखा हुआ था कि आई रिसीव्ड अ वेडिंग इन्विटेशन, एट द बॉटम इट सेड योर प्रेजेंस इज अ गिफ्ट, वी डोंट वॉन्ट एनी गिफ्ट एट द वेडिंग। जी हाँ, सो नीचे लिखा हुआ था आई वॉज कन्फ्यूज, सो आई रीड इट अगेन एंड आई स्टिल एम कन्फ्यूज, एम आई इन्वाइटेड और नॉट। अब आप खुद सोचिए वहां पे लिखा क्या था। उसमें लिखा हुआ था कि योर प्रेजेंस इज अ गिफ्ट, वी डोंट वॉन्ट एनी गिफ्ट एट द वेडिंग। मतलब आप बोल रहे हो कि आपकी प्रेजेंस जो है, यानी कि हमारी प्रेजेंस जो है वही गिफ्ट है, और फिर आप ये भी लिख रहे हो वी डोंट वॉन्ट एनी गिफ्ट एट द वेडिंग। सो आप चाहते क्या हो, हम आए या ना आए? मतलब थोड़ा क्लैरिटी से बोलो। मैं आपको बता रही हूं, हमें कार्ड्स पे सीधा सीधा लिख देना चाहिए कि हम आपको अपने घर पर बुला रहे हैं। जी हाँ, हम बुलाना चाह रहे हैं। उसके अलावा आलतू फालतू चीज हमें बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। जी हाँ, मतलब क्या मतलब है इस चीज का, योर प्रेजेंस इज अ गिफ्ट, वी डोंट वॉन्ट एनी गिफ्ट एट द वेडिंग। अरे प्रेजेंस भी गिफ्ट है और गिफ्ट भी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या आप लोगों को? I was like, yeah, that makes sense. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा ऑफ कोर्स खबरों की तरफ और खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है। जी हाँ, एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर है जिससे शुरुआत करना चाहेंगे और वो है कनाडा से। तो अपेरेंटली कनाडा जो है वो ईयू का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि कनाडा ईयू यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, बट दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज कनाडा कहाँ है, यूरोप कहाँ है, मतलब ये सेंस नहीं बना रही चीज। वेल वो एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो बन भी नहीं पाएगा, लेकिन वो एसोसिएट मेंबर जो है वो बनना चाहता है यूरोपियन यूनियन का। और उसके पीछे रीजन ये है कि वो जो टैरिफ वॉर अमेरिका के साथ चल रही है उनकी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है वो पड़ाव पर पहुंच गई है। और अब कनाडा वाले लोगों को लग रहा है और कनाडाई सरकार को लग रहा है कि उनके पास एक विकल्प होना चाहिए जहां पर वो अपने सामान को बेच पाए विदाउट एनी टैरिफ और उनके जो लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको फायदा हो पाए। क्योंकि जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुई है कनाडा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और तो नुकसान जो है वो अमेरिका को भी बहुत हुआ है, लेकिन अमेरिका का नुकसान अमेरिका को फील नहीं होगा क्योंकि एक हॉट हेडेड और बेवकूफ प्रेसिडेंट जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है। सो ऑफकोर्स अमेरिका का नुकसान, अमेरिका के टैक्स पेयर्स जो है वो झेल रहे हैं। लिटरली टॉयलेट पेपर भी महंगा मिलना शुरू हो गया अमेरिका को, लेकिन यहां पर कनाडा जो है वो विकल्प ढूंढ रहा है कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार नहीं होता है तो कहां होना चाहिए, और उन्होंने यूरोप को चुना है। लेकिन अगर वो यूरोप के एसोसिएट मेंबर बन जाए तो ना सिर्फ वो उनके साथ डील कर पाएंगे विदाउट एनी टैरिफ, बल्कि उनके पास वो कार्ड भी होगा जो कि ग्रीनलैंड के पास था। जी हाँ, अब आपने ये भी सुना होगा कि कैसे ट्रंप जो है वो धमकी दे रहे हैं कनाडा को कि अब जो है हम आपको जल्द ही अपने आप में मिला लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, राइट? बट अगर यूरोपियन यूनियन का किसी भी तरह से मेंबर बनता है कनाडा, तो उन्हें ये फायदा भी होगा कि यूरोप उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कनाडा इज लुकिंग फॉर द पोजीशन इन यूरोपियन यूनियन। नाउ लेट्स से कि ऐसा हो भी जाता है तो क्या उसके बाद चेंजेस आएंगे, क्या अमेरिका ऐसा होने देगा, और अमेरिका का क्या बर्ताव चेंज होगा या नहीं होगा? वेल, मुझे नहीं लगता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट है कुछ चेंज नहीं हो सकता। उनको हटाओ, चेंज लाओ, आई थिंक दैट शुड बी द नारा ऑफ अमेरिकन पीपल फ्रॉम नाउ ऑन। जी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आनंद के साथ खबरों की बात हो रही है, तो अब जरा चलते हैं सीधा ईरान की मिसाइलों की तरफ। जी हाँ, ईरान की मिसाइलों से पहले इनफैक्ट हमें जाना होगा सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के विवाद की तरफ। सऊदी अरब का कहना है कि उसने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागे गए एक ड्रोन हमले को मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से पहले ही नाकाम कर दिया है। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों पर हूती हथियारबंद गुटों के हमलों में बढ़ोतरी के बाद सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कार्रवाई की है। बीबीसी फारसी के मुताबिक यमन युद्ध में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने एक बयान में कहा कि यह दूसरी बार है जब हूती गुट ने मक्का को निशाना बनाया है। मक्का में उन्होंने पहली बार जुलाई 2017 में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। इसी बीच मंगलवार 15 सितंबर को मक्का, जेदा और तैफ में थोड़े समय के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था और सऊदी सिविल डिफेंस अफसरों ने बाद में घोषणा की कि खतरा टल गया है। मक्का के लिए ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है जब हालिया झड़पों के दौरान शहर में पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी गई थी। गठबंधन के अनुसार एक दिन पहले सऊदी अरब के 3 शहरों पर हूती मिसाइलों और ड्रोन हमलों में 13 नागरिक घायल हो गए थे और 7 घर और 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे।

जुलमसी के साथ हम बात हो रही है अभी फिलहाल के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईरान और अमेरिका, क्योंकि ये वाला विवाद जो है वो भी बढ़ता ही जा रहा है. जी हाँ, सो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के हिसाब से ईरानी मिसाइलों में मध्य पूर्व में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान. जी हाँ, सो ये तस्वीरें ईरान की किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मध्य पूर्व में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इमारतों और वाहनों को हुए व्यापक नुकसान और विनाश को दिखाती हैं. ये तस्वीरें सेवा में मौजूद अमेरिकी सैन्य कर्मियों ने CBS को इस शर्त पर भेजी कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए, क्योंकि अमेरिकी सेना में मीडिया पर सख्त प्रतिबंध है. जी हां, इस संबंध में क्षेत्र में तैनात सैनिकों में से एक ने CBS को बताया, ये हमारे सैन्य ठिकानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी जानकारी अमेरिकी जनता को नहीं दी गई है. वो हम वहां आंखें बंद करके खड़े हैं और हमारे चेहरे पर 5 मुक्के पड़ रहे हैं. जी हां, CBS को मिली एक तस्वीर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से ली गई थी और इसमें 4 इंजन वाले बोइंग A3 सेंट्री विमान के पिछले हिस्से पर सीधा हमला दिखाया गया है. इस तस्वीर में विमान का पिछला हिस्सा उसके जले हुए हिस्से से अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें एक घूमने वाला रडार सिस्टम भी लगा था जो हवाई गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जरूरी बताया जा रहा था.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
6: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
7: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं,
8: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
7: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
8: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
7: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
8: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
7: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
8: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
9: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
10: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज जेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ सऊदी अरब ने लाल सागर में स्थित यानबू पोर्ट से तेल लोडिंग रोकी। जो यहां समाचार एजेंसी राइटर्स ने शिपिंग सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि लाल सागर पर स्थित सऊदी अरब के यानबू पोर्ट पर तेल की लोडिंग रोक दी गई है। इन खबरों के बाद मंगलवार को तेल की कीमतों में लगभग $3 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है। बीबीसी फारसी ने बताया कि खबरों के मुताबिक सऊदी अरब ने यूरोपीय खरीदारों को सूचित किया है कि उसने सितंबर के अंत में कच्चे तेल की आपूर्ति रद्द कर दी है। 3 दिन पहले हुए ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में तेल की आपूर्ति रोक दी है। इस पाइपलाइन ने सऊदी अरब को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने बिना यानबू तक और वहां से स्वेज नहर के रास्ते यूरोप तक तेल पहुंचाने में मदद की थी। इस पाइपलाइन की वजह से बाब अल मंदेब से गुजरना जरूरी नहीं रह गया था। हाल के दिनों में ईरान समर्थित हथियारबंद गुट ने बाब अल मंदेब को कब्जे में ले लिया है। इससे सऊदी अरब की चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको, जिसने 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यानबू टर्मिनल का उपयोग बढ़ा दिया था, उसने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार भी कर दिया है।
11: Oh God, one more remix.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ट्रंप की बात कर लेते हैं और साथ में अमेरिका की बात भी कर लेते हैं। भारत समेत कई देशों पर 100% टैरिफ वाले विधेयक पर होगी वोटिंग। जी हाँ, अमेरिकी सदन रूस पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक पर वोटिंग के लिए तैयार है। इसमें भारत सहित 4 अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। अमेरिकी संसद का निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रूस के खिलाफ प्रतिबंध वाले बिल पर वोटिंग के करीब पहुंच गया है। ये प्रस्तावित कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देगा। इन देशों में भारत भी शामिल है। इस बिल को लिंडसे ओग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 का नाम दिया गया है, जो पहले ही अमेरिकी सेनेट में भारी बहुमत से पारित हो चुका है। संशोधन में भारत का नाम स्पष्ट रूप से उन देशों में शामिल करने की मांग की गई है जिन पर कारोबार के लिए अतिरिक्त 100% शुल्क। इस बिल पर कल यानी गुरुवार को वोटिंग होने की उम्मीद है। इस बात की संभावना है कि ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पास हो जाएगा, 100% टैरिफ जो है वो भारत पर लग जाएगा। लेकिन इसका असर भारत पर है, और इसके अलावा क्या भारत फिर रूस के साथ करेगा कारोबार या नहीं करेगा, वो भी एक क्वेश्चन है, बट वो वक्त ही बताएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब इतनी सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो थोड़ा ट्रम्प या मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। आप लोग बोलो कि ये निविया क्या हो रहा है? वेल आई यू नो देर आर सम थिंग्स दैट वी वांट टू से बट वी कांट, बिकॉज ऑफकोर्स हमें अपनी जो प्रोग्राम है उसकी जो है विचारधारा के ही जो है अंदर रहकर सारी की सारी चीजें बोलनी है। सो यहां पर ट्रम्प जी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत कुछ किया है, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने बेटे के बारे में, सबसे बड़े बेटे के बारे में, जूनियर ट्रम्प के बारे में, और उन्होंने कहा कि कैसे अपनी शादी के बाद वो एकदम काम हो गए हैं। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज सन गेटिंग मैरिड, सो ही वॉज लाइक यू नो व्हाट आई फील लाइक मेरा जो बेटा है वो काफी काम हो गया है, मतलब एक कामनेस जो है वो आ गई है इस शादी के बाद। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेटमेंट के बाद हमें ट्रम्प की एक और शादी जो है वो पक्की कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बेटे में कामनेस आ सकती है तो पिता में भी आ सकती है। लेकिन पहले ही 3 शादियां कर चुके हैं महाशय, चौथी करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। अगर सच में थोड़ी भी एनर्जी बाकी होती ट्रम्प में तो लिटरली हम उनकी एक और शादी करा देते, ताकि उनमें भी थोड़ी कामनेस आ जाती और वो कामनेस पूरे दुनिया को उसकी जरूरत है। एक और चीज उन्होंने कही अपनी बड़ी से स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि ये जो सारा का सारा जो यू नो ऑयल गैस क्राइसिस है ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से है, मैंने जो ईरान के साथ वॉर छेड़ी उसकी वजह से तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे उसकी वजह से नहीं है ये प्राइसेस, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो हुआ है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से हुआ है, मुझे मत कुछ बोलना तुम। जी हाँ, अब ऐसे में हम क्या ही बोले, हम सबको पता है कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जगहों को सील करवा दिया, ऐसे रास्तों को सील करवा दिया जहां से सबसे ज्यादा कारोबार होता था तेल और गैस का, और फिर ये कह रहे कि अरे मेरी वजह से नहीं हुई है ये महंगाई, तुम क्या बोल रहे हो ये। जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको किसी बॉलीवुड मूवी में कास्ट कर लेना चाहिए। ट्रम्प कैन बी अ ग्रेट एक्टर, ऑफकोर्स मैकडोनल्ड की वो एड नहीं होनी चाहिए, और ऑफकोर्स सोने की भी वो एड नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ एक और चीज हुई है जो कि बहुत ही फनी है। सो सऊदी अरब और हूतियों के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि प्लीज हमारी हेल्प करो यहाँ पर, क्योंकि हूतीज जो है वो लिटरली हमारी पूंछ के पीछे लगे हुए हैं। तो You know what Trump said? You know what America said? They are like, you know what? हम आपकी ना मतलब पूरी इंटेलिजेंस में जो है वो मदद कर देंगे, पर लड़ाई तुमको खुद ही लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, हमने तो बस अपने बेसिस तुम्हारी कंट्री में बनाए हैं, लेकिन अब उसमें हमारी क्या गलती है, राइट? हमने तो ईरान के साथ लड़ाई छेड़ दी, अब बाकी की पूंछ धोती घर तुम खुद संभालो अपना, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम्हें इंटेलिजेंस जरूर देंगे जो कि हम बेसिकली खुद ही बनाते हैं, हमारे चाचा जी है ना CIA, वही बनाते हैं। सो हम उनसे तुमको इंटेलिजेंस दिलवा देंगे, बाकी सब तुमको खुद करना पड़ेगा, लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी, हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। या दैट्स व्हाट अमेरिका सेड। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज है ना, वो सारे के सारे यूएस बेसिस को खुद ही ना खत्म कर दें। दे आर लाइक, अच्छा ईरान तुमको ये चाहिए ना, हम इनको खुद ही खत्म कर देते हैं, तुम मत परेशानी लो, हम ही कर देते हैं। क्योंकि ये बेवकूफ इंसान, निकम्मा इंसान जो कि कुछ काम में नहीं आता, लेकिन हमारे यहां पर लिटरली बेड़े लगवा दिए इसने। जी हां, यहां पर ये सब चल रहा है अमेरिका के साथ। सो Course, Mr. Trump is still enjoying his McDonald's, and हम कुछ भी बोले वो McDonald's खा रहे हैं। So let's see कब तक चलता है ये। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही जबरदस्त है।

जी हाँ, नचते नचते नच। लेकिन इसी के साथ आगे की ओर बढ़ने का वक्त हो गया भाई, नाचने का टाइम हमें मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, और अगर कुछ वायरल हो रहा है इंटरनेट पर तो हम आपको कैसे नहीं बताएंगे। मतलब मेरा तो कर्तव्य है ना, और मैं अपना कर्तव्य पूरा करके रहूंगी। सो वीडियो है एक 63 साल के व्यक्ति की, यानी कि 63 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम चाइना का, जियांगसू प्रोविंस। जी हाँ, और वो बंदा जो है वो वायरल हो गया है। फॉर वॉट? फॉर हिज एक्सरसाइज। आप लोग बोलोगे एक ही गल हो गई, मतलब ये क्या बात हो गई निव्या, मतलब एक्सरसाइज तो दुनिया में इतने सारे लोग कर रहे हैं, वाई इज ही गेटिंग फेमस? वेल, बिकॉज ही इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन वॉटर। जी हाँ, पानी में एक्सरसाइज कर रहा है इंसान, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं। आप लोग बोलोगे हैं, हमसे जमीन पे नहीं हो रही, लोग पानी पे कर रहे हैं। वहां जापान के लोग 100 साल से ऊपर भी हेल्दी जी रहे हैं, और यहाँ पे उठते ही हमारी घुटने में कड़ कड़ की आवाज आ रही है। वाल या ये सही है, मैं आपको बता रही हूँ। सो हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हेल्दी रहने के लिए जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बी इट रनिंग, बी इट योगा, बी इट यू नो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जस्ट डू इट। बस पड़े पड़े मत रहिए, चलिए उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, काम कीजिए। एंड मैंने से काम अपने हेल्थ के लिए काम कीजिए। चलिए फिर से जरा वीडियो के ऊपर आते हैं। सो ये 63 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम चाइना के जियांगसू प्रोविंस, ही इज गॉन वायरल बिकॉज उनकी एक वीडियो जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील की बेसन जो है उस पर उन्होंने अपना एक ऐप व्हील बनाया हुआ, और वो ऐप व्हील एक्सरसाइज जो है वो वहां पर कर रहे हैं। मतलब वो दोनों हाथों से उस बेसन को आगे की ओर करते हैं, उनके पैर जो है वो जमीन पे होते हैं, और फिर उनके हाथ जो है वो एक बेसन पे होते हैं जो कि पानी में होती है, और वो उसको फिर से पीछे को लाते हैं, फिर से आगे को लेकर आते हैं, फिर से पीछे को लाते हैं। मतलब लिटरली इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। अच्छा, पहले तो वो दो हाथों से करते थे, अब वो एक हाथ से कर रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा कर्तव्य वाली बात हो गई। मतलब ऐसे ही चलता रहा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भर जाएगी, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बोलेंगे अरे मतलब यार कितने लोग, कितने सारे जो है वो नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा थम जाओ। जी हाँ, मतलब इट इज पॉसिबल, आने वाले टाइम में इट इज पॉसिबल। सो बंदा जो है वो लिटरली वायरल हो गया अपनी एक्सरसाइज के लिए। उसने कहा कि कैसे उसने पिछले साल एक व्यक्ति को ये करते हुए देखा, एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट। और पहले दो हाथों से करते थे, अब वो एक हाथ से करते हैं, और लिटरली ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो भी मैं कह रही हूं वो मेरी मम्मी ना सुन ले, नहीं तो मेरी मम्मी का जो लंबा सा स्पीच आने वाला है, बिकॉज शी इज लाइक ओके बेटा तुम्हारा बस चले ना, तुम वॉशरूम भी अपनी गाड़ी में जाओ। जी हाँ, दैट्स व्हाट शी सेज एक्चुअली, वो मुझे यही बोलती हैं। सो क्या आपको भी ऐसे ताने मारे जाते हैं आपके घर वालों के थ्रू? बट द थिंग इज कि मॉरल यही है स्टोरी का कि उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपने घर वालों को शिकायत का एक भी मौका मत दीजिए। और अगर आपके घर वाले शिकायत करते हैं और खुद एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि ऐसे बातें करने से नहीं चलेगा, करना तो खुद को भी पड़ेगा। जी हाँ, एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355। याद रहे 04006444355।

0: या फिर ईमेल करें singjd@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो आ जाइए हमारे साथ शामिल हो जाइए इस खूबसूरत से सेगमेंट को हम एकदम और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपके पास है कोई गाना जो कि आप फरमाइश करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को, और वो गाना है पुराना यानी कि पुरानी एरा का है, वही एरा जो खूबसूरत थी, प्योर थी और एकदम एकदम शिद्दत से भरी थी, तो बस फिर आपको वो गाना लेकर आ जाना है अभी कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू। आपके पास नंबर ऑलरेडी हमने दे दिया है और यहां पर पुराना गाना फरमाइश करने का दिस इज द परफेक्ट टाइम। सो यहां पर जो गाना इस सेगमेंट की स्टार्टिंग में प्ले करने वाली हूं आज मैं, वो है बागों में बहार। जी हाँ, स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट सॉन्ग, एंड सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बात।
3: अच्छा तो ये बताओ, बागों में बहार है? मैंने पूछा बागों में बहार है? गर्मियों से निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

जी दोस्तों, इसके साथ जब बात होती है स्टारडम की तो हमें बड़े सारे एक्टर्स के नाम याद आते हैं, लेकिन जब बात होती है सुपर से भी ऊपर वाले स्टारडम की तो हमें सिर्फ एक नाम याद आता है, एंड दैट इज काका, यानी राजेश खन्ना। नाउ राजेश खन्ना के बारे में किस्से जो है वो बहुत ज्यादा हैं, कैसे वो लेट लतीफ थे लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी, औरतें उनकी गाड़ी पर चुंबन के निशान छोड़ जाया करती थी, उनकी सफेद गाड़ी को गुलाबी बना देती थी। लेकिन ऐसा ही एक किस्सा है जहां पर राजेश खन्ना यानी कि काका को खुद ये एहसास हुआ था कि उन्होंने जो अचीव किया है वो शायद कोई और कर भी नहीं पाएगा। जी हाँ, सो बेंगलुरु में एक स्टेट लॉटरी के कार्यक्रम में राजेश खन्ना को बुलाया गया और राजेश खन्ना वहां पर पहुंचे। उन्हें वो लॉटरी का नंबर निकालना था जिसने लॉटरी जीत ली थी। बस क्या था, वो गए और उनके साथ, मानिए वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ जावेद अख्तर भी वहां पर गए। जावेद अख्तर ने वो सारा का सारा मंजर देखा और जावेद अख्तर ने ही सबसे पहले इस मंजर को बयान किया। जावेद अख्तर कहते हैं कि जब हम वहां पर पहुंचे तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा भीड़ में वहां पर आए हुए थे, बहुत ज्यादा नंबर्स में आए हुए थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि राजेश खन्ना जो है वो आए हुए हैं तो और दूर दूर से लोग आने लगे। अब मंजर ये हो गया कि थोड़ी ही देर में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 4 से 5 मील तक सिर्फ लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, इतनी ज्यादा भीड़, इतने सारे लोग, लेकिन वो लॉटरी की टिकट के लिए या लॉटरी के नंबर आए थे सिर्फ और सिर्फ काका यानी कि राजेश खन्ना का चेहरा देखने, उनकी एक झलक पाने, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ये सारा का सारा नजारा देखकर राजेश खन्ना इतने ज्यादा भावुक हो गए कि वो लिटरली रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद मैंने जो अचीव किया है वो कोई और अचीव नहीं कर पाएगा और इससे ज्यादा मैं खुद भी नहीं अचीव कर पाऊंगा। क्या बात है, राइट? मतलब क्या स्टारडम, जब भी हम बात करते हैं मतलब स्टारडम, बड़े बड़े स्टार्स हुए हैं, लेकिन सुपर स्टारडम, ऐसा कहना कि राजेश खन्ना से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता था, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर श्री निविया के साथ. और शो तो इवनिंग वाइब चल रहा है लेकिन यहाँ सेगमेंट चल रहा है ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराने गाने चल रहे हैं और पुराने किस्से भी हम आपको सुना रहे हैं. जी हाँ, तो ये है किस्सा एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का जो कि बहुत ही हिट हुई, बहुत ही बड़ी हिट हुई. लेकिन 1972 में आई ये मूवी जो है वो अमिताभ बच्चन के करियर के लिए बहुत गड़बड़ कर सकती थी. जी हाँ, सो बॉम्बे टू गोवा की बात हो रही है और 1972 में ये मूवी आई थी. अब ऐसे में दो गाने जो हैं वो अमिताभ बच्चन जो इसमें किरदार निभा रहे थे वो बहुत ही अच्छे से प्ले कर चुके थे, बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज हो चुके थे. लेकिन एक गाना था जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें उन्हें महमूद, द लेजेंडरी महमूद के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करना था और उनके साथ परफॉर्म करना था. अब वो जितनी भी बार कोशिश करते वो इसे कर ही नहीं पाते, या इतना ज्यादा खराब हो गया माहौल वहां पर कि महमूद ने किशोर दा को, जो कि ये गाना गाने वाले थे, उनको कह दिया कि देखो भाई तुम ऐसा करो, हम ना अमिताभ बच्चन के बजाय किसी और को यहां पर ले लेते हैं क्योंकि अमिताभ से हो नहीं पा रहा है. जी हाँ, अब किशोर दा की एक बात जो है उन्होंने लिटरली अमिताभ बच्चन के करियर को बचा लिया. किशोर दा कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं, इस बार मुझे लगता है कि अमिताभ जरूर कुछ कर देगा. जी हाँ, और वैसा ही हुआ. किशोर दा ने गाना गाया, पिक्चराइज हुआ अमिताभ बच्चन पे और वो गाने में परफॉर्म किया. क्या जबरदस्त परफॉर्म किया अमिताभ बच्चन ने. जी हाँ, ऑफकोर्स महमूद के साथ वो स्क्रीन शेयर कर रहे थे और महमूद के साथ उसी लेवल पे परफॉर्म करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी. ऑल्दो अमिताभ वॉज अ गुड एक्टर, बट महमूद के साथ उसी यू नो वाइब को, ट्यून को आगे बढ़ाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल था. एंड दैट वॉज द रीजन कि वो पहले नहीं हो पा रहा था. लेकिन किशोर दा के दिखाए इस विश्वास ने बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को ही रखा, उस गाने में भी अमिताभ बच्चन को ही रखा और इनफैक्ट वो गाना लेजेंडरी भी हुआ. जी हाँ, बात हो रही है देखना है रे सो जाना. जी हाँ, बट अभी के लिए मैं गाना ये नहीं प्ले कर रही हूं, मैं बस आपको किस्सा सुना रही हूँ. गाना प्ले होने वाला है एक रिकमेंडेड सॉन्ग जिसकी रिकमेंडेशन एक्चुअली मुझे पिछले कल ही आ गई थी, बट क्योंकि प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तो हम इसे प्ले नहीं कर पाए थे. लेकिन आज हम इसे प्ले कर रहे हैं और ये रिकमेंडेशन आया है बहुत ही खास शख्सियत, हमारे बॉस मिस्टर जतीश पूरन जी. की तरफ से। गाने का नाम है दीवाना मुझसा नहीं, क्या बात है। सो सर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है ये गाना तो अभी तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर यू नो कीमती रिकमेंडेशन। और मेरे लिसनर्स को मैं ये कहती रहूंगी हमेशा कि आप लोगों के गाने जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी फरमाइशें भी जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच सर, ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जी हाँ, आपने सही सुना, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि घड़ी ने कर दिया है इशारा, अब होगा हमें जाना। लेकिन हम आएंगे कल यानी कि थर्सडे को आपसे मिलने, क्योंकि इवनिंग वाइब पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए हम लेकर आते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब आप भी तैयारी कीजिए अपनी शाम की, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय, सी यू, टाटा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, अगेन अ कल्ट फेवरेट, थोड़ा सा सेंटी टोन की तरफ है, बट इट इज अ कल्ट फेवरेट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरू मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। क्वींसलैंड में एंथ्रोपिक का नया डेटा सेंटर, दुनिया की बड़ी AI कंपनियों में शामिल एंथ्रोपिक ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला डेटा सेंटर वेस्टर्न डाउन्स क्वींसलैंड में स्थापित करने का समझौता किया है। यह केंद्र सौर और पवन ऊर्जा पर संचालित होगा। वहीं विक्टोरिया में नए सार्वजनिक सुरक्षा कानून, विक्टोरिया सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए और सख्त चाकू नियंत्रण नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए 1200 नए मेटल डिटेक्टर दिए जाएंगे। वहीं ब्रिस्बेन में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को रफ्तार, क्वींसलैंड के क्षेत्रीय क्षेत्रों में नए विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश की गति बढ़ा दी गई है ताकि राज्य को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा सके। वहीं क्राउनलैंड एक्ट पर स्वदेशी अधिकार परिषद का विरोध, न्यू साउथ वेल्स में पारित नए क्राउन लैंड अमेंडमेंट बिल का एबोरिजिनल लैंड काउंसिल ने विरोध किया है और कहा है कि इससे स्वदेशी भूमि अधिकारों पर असर पड़ेगा। इसी के साथ ब्रिस्बेन लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार, दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में बढ़ते यात्रियों के दबाव को देखते हुए ब्रिस्बेन बस और ट्रेन नेटवर्क की सेवाओं में अतिरिक्त फेरे जोड़ने का ऐलान किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ईंधन राहत पर सरकार का बयान, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि निकट भविष्य में फ्यूल एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिलहाल मौजूदा स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले UPI ट्रांजैक्शन और RBI का बड़ा फैसला। RBI ने बड़े UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने की सिफारिश की है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने आम जनता को राहत देते हुए साफ किया है कि 2000 तक के छोटे भुगतानों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को बिल्कुल सुरक्षा मिलती रहेगी। वहीं भारत और वियतनाम के बीच नई साझेदारी, भारत और वियतनाम ने मिलकर साल 2027 को भारत वियतनाम मित्रता वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच 55 साल के राजनयिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्रों में नई पहलों की शुरुआत की गई है। वहीं केरल में बिजली संकट से राहत की कोशिश, केरल सरकार ने राज्य में जारी बिजली संकट को हल करने के लिए 7 राज्यों से संपर्क साधा है। राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ भी बातचीत की है ताकि लंबे समय के लिए बिजली की आपूर्ति पक्की की जा सके। वहीं गुजरात में मैंग्रोव संरक्षण के लिए नया पोर्टल, पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव GIS पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मकसद देश के तटीय इलाकों और मैंग्रोव जंगलों की डिजिटल मैपिंग करके उनका सही तरीके से संरक्षण करना है। वहीं पश्चिम बंगाल को मिलेगा नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को पश्चिम बंगाल के पूर्व मोदिनपुर जिले के जुनपुट में एक नया हथियार मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की मंजूरी मिल गई है। वहीं वेस्टर्न घाट में नई प्रजाति की खोज, वैज्ञानिकों ने पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट्स में अभ्यचर एम्फीबियन एक नई प्रजाति खोजी है। इसके साथ ही भारत में पाए जाने वाले एम्फीबियन की कुल संख्या बढ़कर 458 हो गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स का साझा प्रस्ताव। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स की सरकारों ने मिलकर आत्मनिर्णय का एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र साझा किया है। इस कदम से यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त आंतरिक राजनीतिक ढांचे में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं वैश्विक व्यापार में भारत और मंकसुर का समझौता, जी हां, भारत और दक्षिण अमेरिका व्यापार समूह मकासुर ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोनों क्षेत्रों के बीच डिजिटल प्रमाण पत्रों के माध्यम से पेपरलेस व्यापार शुरू होगा। वहीं कोलंबो सिक्योरिटी सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ। वहीं अमेरिका में नई आर्थिक नीति पर बहस। अमेरिकी संसद में व्यापार नीति को लेकर एक नए बिल पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत विदेशी तेल और ऊर्जा आयात पर एक नए टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ वैश्विक स्तर पर विस्थापितों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद। संयुक्त राष्ट्र ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में बेघर हुए परिवारों और राहत शिविरों की मदद के लिए $9 मिलियन की आपातकालीन निधि जारी की है। वहीं AI सुरक्षा और रेगुलेशन पर वैश्विक सम्मेलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माता एक मंच पर एकत्र हुए, जहां AI के जिम्मेदार उपयोग पर गाइडलाइंस बनाने का मंथन जारी हुआ। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले मुकेश कुमार का काउंटी क्रिकेट में नया सफर। भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में नॉटिंगहमशायर टीम से जुड़ गए हैं। वहीं मैग्नस कार्लसन की 5वीं विश्व खिताबी जीत। शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन ने अपनी 5वीं विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के बाद खुशी जताई है। वहीं NRL से 2 महान खिलाड़ियों की विदाई। महिला रग्बी लीग की 2 सबसे दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने संन्यास का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिससे रग्बी प्रशंसकों के बीच एक युग का अंत माना जा रहा है। वहीं वॉरियर्स और नाइट्स के बीच नॉकआउट मुकाबले के टिकट सोल्ड आउट। ऑकलैंड में होने वाले वॉरियर्स बनाम न्यूकैसल नाइट्स के रग्बी सेमीफाइनल मैच के सभी 40,000 टिकट बिक्री शुरू होने के महज 48 घंटों के भीतर बिक गए। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाले हुए क्षतिग्रस्त। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रोअर रुमेश पथिराजे के 3 विशेष भाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए, जिस पर एथलीट ने कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें परमानंद @optusnet.com। mats.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेंबर द नेम फर्मानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट.
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. I'm so confused.
7: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com.
8: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
9: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
8: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है.
9: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
8: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ.
9: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
10: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
11: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
12: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। फ्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। फ्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश शलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरियां अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है ते फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई टी है जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्लुसोनी 101.01 ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म दे बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने, जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च होंदा होंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय होंदा है हिट या फ्लॉप, यही दस्सदे आं। पर पहले गीत सुणो।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वाने वन सनो वन एम ते चार चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट है कि है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, ता जे फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि है वह फ्लॉप हुंदी है। ते एवरेज फिल्म कि हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है कि ते मामूली मुनाफा कमाती है कि, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है कि है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले और ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

0: तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: द्वारा तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सन वन एम ते चार चे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हां जी, तो देखो हुण असली कमाई का सच जानते हैं तो लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने तो बजट 80 करोड़ का हैगा तो फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स से सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझिया जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है, तो फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि नहीं, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जाना नहीं, तो थानू जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थानू किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है क्यों। रेडियो बिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है, सरिया जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रेडियो ब्रिस्वानी।
1: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
2: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज आलिया।
3: हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पे।
0: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज शाहरुख खान।
4: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सचमन नारायण नारायण हरि हरि। आप हरि कहें, नारायण कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, कुछ भी कहें, सुबह उठते ही उसका नाम लेना नियति है हर धर्म की, हर कर्म की। वैसे आप उसे जिस भी नाम से पुकार लें, वो आपको अपने बंदे के रूप में ही जानता है। उसके लिए सब समान है, ना तो वो धर्म देखता है, ना देश और ना ही सरहदें। वो तो बस बंदे का दिल देखता है। अगर आपका मन भी सच्चा है, साफ है, तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना छोटी हो लेकिन उस तक पहुंचेगी जरूर, और न सिर्फ पहुंचेगी वो आपकी सुनेगा भी जरूर। तो आइए मिलकर अरदास लगाते हैं उससे और कहते हैं कि बस सुने, हमारी नहीं हम सबकी सुने और सबकी जिंदगी में खुशियां भर दे। आइए जीवन आधार में बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी पर आपके साथ इस सुबह के ताजा तरीन सफर में सताक्षी एक बार फिर से है। दोस्तों, कई बारी ऐसा होता है कि जब हम बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो हम बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, या ये कहें कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, बड़ों को देखकर कभी भी छोटों को मत भगाइए या छोटों की बात को नजरअंदाज मत कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जहां छोटों का काम होता है ना, वहां बड़े कुछ नहीं कर सकते। अब जरा सोच के देखिए, क्या सुई का काम तलवार कर सकती है? नहीं ना। इसलिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ना तो उम्र में और ना ही ओहदे में। ये बात आपके ओहदे पर भी बिल्कुल लागू होती है कि आप सबके साथ एक समान व्यवहार रखें, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन के आधार से जुड़ा ये खास सफर है जीवन आधार, जिसे आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, इस सुबह के सफर के साथ हम रोज आगाज करते हैं उन विचारों का जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, हमारे नए दिन की शुरुआत के लिए जरूरी हैं और हमारे रिश्तों, हमारे विचारों के लिए जरूरी हैं। तो चलिए अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता निकाल के कुछ शुद्ध विचारों के साथ करते हैं दिन का आगाज जीवन आधार में, और बढ़ते हैं आगे एक और गाने के साथ।

परिवार तब तक एक परिवार है दोस्तों, जब तक सब एक ही माला के मोती बनकर रहें, यानी कि बिखरे नहीं, एक साथ एकजुट होकर रहें। लेकिन जिस दिन ये मोती बिखर जाते हैं ना, उस दिन परिवार भी बिखर जाता है, बिल्कुल विभीषण की तरह। किस तरह विभीषण ने रावण का भेद देख के राम को विजयी बना दिया था, याद है ना? जब एक परिवार अलग होता है तो घर के भेद भी अलग होते हैं। याद है आपको कि कैसे जब आंखों से आंसू गिरते हैं तो ये बता देते हैं कि आप कितने दुखी हैं? ठीक उसी तरह से जब फैमिली के मेंबर्स अलग होते हैं तो ये बता देते हैं कि घर का भेद क्या है, घर की कंडीशन क्या है। इसलिए हमेशा एक परिवार बनकर एक माला में एकजुट होके रहिए और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ। जीवन की नैया को बचाकर उसके खिवैया बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस ऊपर वाले तक पहुंच का मार्ग खोज लिया जाए, उस शक्ति को जो इस संसार को चला रही है उसको पहचान लिया जाए, उसी शक्ति को जानने समझने पहचानने और जीवन धारा से जुड़ने की एक कोशिश जीवन आधार इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं और इसी सफर में आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ।

जैसी परे सो सही रहे कही रहीम या देह, जैसी परे सो सही रहे कही रहीम या देह, धरती ही पर परत है सीत घाम और मेह। नहीं समझे? रहीम जी का ये दोहा जिंदगी की एक बहुत ही कीमती सच्चाई को बताता है दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करना चाहिए, यानी कि जो आप पर बीतती है उसे सहना चाहिए, क्योंकि इसी धरती पर ही तो सर्दी गर्मी बरसात पड़ती है। यानी जिसका शरीर जैसा भी हो उसे सुख दुख इसी दुनिया में रहकर सहना होता है, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे निभाना तो पड़ेगा, है ना। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के।

जीवन के आधार से जुड़ा सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ, और इस सफर में कुछ खास बातों के साथ जिंदगी से जुड़ी, आपसे जुड़ी और आपके सपनों से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ आगे बढ़ेंगे और यहां पर सुनेंगे एक और ऐसा गीत जो आपको जिंदगी के मायने समझा देगा। सुनते रहिए जीवन आधार रेडियो प्रसवानी।

रूठे सुजन मनाइये जो रूठे 100 बार रहिमन फिर फिर पियोइये टूटे मुक्ता हार। जी हाँ, अगर आपके अपने आप से 100 बार भी रूठ जाए ना दोस्तों, तो रूठे हुए को अपनों को मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर मोतियों की माला टूट जाए तो उसे बार बार धागे में पिरोने की आदत आपको होनी चाहिए। ऐसा होता है कि जब रिश्ते बड़े होने लगते हैं ना, तो अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश करते हैं, ठीक उस माला की तरह जो ढीली हो जाती है और उसके बिखरते मोती इधर उधर भागते हैं। बहुत जरूरी है कि फिर से उन मोतियों को एक नए धागे में पिरोकर अपने पास संभाल के रखा जाए। आप समझदार हैं और अगर परिवार के सदस्य परिवार का साथ छोड़ना या आपसे रूठना जानते हैं, तो आपको उन्हें एक धागे में पिरोना, उन्हें मनाना आना चाहिए। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ सताक्षी है।

तो दोस्तों, ये था आज एक और जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास सफर जीवन आधार। इसी सफर में कल एक बार फिर से होगी आपके साथ सुबह की नई किरण के साथ फिर से मुलाकात। और कल जब तक हम और आप मिलते हैं, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईश्वर यानी इस दुनिया का पालनहार वो शक्ति है जो हम सबको चला रहा है और जिसके लिए हम किसी भी धर्म के हों समान हैं। उसी ईश्वर को आज का ये आखिरी गीत समर्पित करूंगी।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और आप सभी को एक बहुत ही प्यारी वाली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चाने जैन। सुबह का टाइम है कॉफी या फिर चाय हाथ में होगी, कुछ लोग ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, कुछ स्कूल ड्रॉप के लिए रेडी हो रहे होंगे और कुछ लोग शायद ना अभी भी अलार्म के साथ नेगोशिएशन जरूर कर रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, हर सुबह एक नया चांस लेकर आती है। कल जो नहीं हुआ जरूरी नहीं है वो आज भी ना हो। सो स्माइल कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और बोलिए आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर जरूर लगाएं, फोन को हाथ में मत रखिएगा क्योंकि आज का ब्रिस्वानी मॉर्निंग आपके साथ पूरे एक घंटे चलेगा। तो आइए जी सुनते हैं ये ट्रैक, करते हैं शुरुआत इस प्रोग्राम के, इस ट्रैक के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। वैसे दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है सुबह की चाय का जब टेस्ट की बात करें, टेस्ट तब और अच्छा लगता है जब माइंड ना थोड़ा सा पीसफुल हो जाता है। इसीलिए आज एक सिंपल रूल रखिए, हर प्रॉब्लम को सुबह सुबह सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें ना टाइम के साथ क्लियर होती है। आज बस अपना बेस्ट दीजिए और ब्रिस्बेन के सभी पेरेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स और अर्ली मॉर्निंग ड्राइवर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रेडियो ब्रिस्बेन। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन की इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। ब्रिस्बेन के बॉन हिल्स एरिया को फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा प्लान सामने आया है। प्रपोज चेंजेस के तहत एरिया में बिल्डिंग हाइट्स बढ़ाने और हाउसिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने की प्लानिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डेवलपमेंट से पोटेंशियली 2700 तक न्यू होम्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं। ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स और विक्टोरिया पार्क के आसपास भी मेजर डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे हैं। ब्रिस्बेन 2032 गेम्स को ध्यान में रखते हुए रेडियो ब्रिस्बानी ऑडियंस के लिए एक सिंपल सा सवाल है, आप ब्रिस्बेन में नया हाई रेज डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं, मोर होम्स या फिर मोर ट्रैफिक? जरूर मैसेज करके बताइएगा। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, वैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी क्वींसलैंड की एक बड़ी न्यूज है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने क्वींसलैंड में एक प्रपोज्ड डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। एबीसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्टेड वैल्यू अराउंड 32 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और लोकेशन ब्रिस्बेन से वेस्ट में प्रपोज्ड है। एआई का यूज बढ़ रहा है जॉब्स, बिजनेसेस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में। इसका इम्पैक्ट आने वाली ईयर्स में और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लोगान में एक हाउस पार्टी अटैक के केस में पुलिस ने एक और पर्सन को मर्डर चार्ज किया है। एबीसी के मुताबिक इस केस में अब 9 लोग चार्ज्ड हो चुके हैं। आइए अब इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्वानी में, और अब वक्त है भाई थोड़ा सा फिल्मी तड़के का। ऑस्ट्रेलिया की पॉप आइकन काइली एक बार फिर से स्पॉटलाइट में है। काइली को 2026 AFL ग्रैंड फिनाले के प्री गेम एंटरटेनमेंट के लिए हेडलाइन परफॉर्मर अनाउंस किया गया है, और लेटेस्ट अपडेट में जी फ्लिप भी काइली के साथ परफॉर्मेंस लाइनअप का हिस्सा होंगे। तो 26 सितंबर को AFL ग्रैंड फिनाले के साथ म्यूजिक लवर्स के लिए भी एंटरटेनमेंट का डोज जो है वो रेडी है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फैंस के लिए भी एक एक्साइटिंग न्यूज है। कैल्विन हैरिस ने अपने फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन हेडलाइन टूर अनाउंस की है। ग्रामी विनिंग डीजे ऑस्ट्रेलिया में अपने मेजर हिट्स के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। और अब बताइए भाई, कैल्विन हैरिस के नाम सुनते ही भाई आपके माइंड में सबसे पहला कौन सा सॉन्ग आता है? आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन और बात करते हैं भाई स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स लवर्स अटेंशन प्लीज, AFL ग्रैंड फिनाले अब ज्यादा दूर नहीं है और मेलबर्न में होने वाले इवेंट की प्रिपरेशंस और एंटरटेनमेंट अनाउंसमेंट्स को लेकर एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ रही है। काइली मिनॉग की परफॉर्मेंस ऑलरेडी हेडलाइन बन चुकी है और क्वींसलैंड रग्बी लीग में भी प्रीलिमिनरी फाइनल्स का वीकेंड आ रहा है जिसके मैचअप्स ऑफिशियली कन्फर्म किए गए हैं। तो ब्रिस्बेन के स्पोर्ट फैंस, आप AFL देखते हैं या फिर NRL? मैसेज करके जरूर बताइए। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। अब थोड़ी सी भाई दिल की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है दोस्तों, लाइफ में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? स्टार्टिंग अगेन। जी हाँ, लेकिन कभी कभी रीस्टार्ट ही सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर बन जाता है। अगर कल आपका दिन डिफिकल्ट था, आज को कल की पनिशमेंट मत बनने दीजिएगा। आज फ्रेश स्टार्ट कीजिए, एक छोटा सा लक्ष्य रखिए, एक फोन कॉल जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं वो कर दीजिए, एक काम जो पेंडिंग है स्टार्ट कर लीजिए, और किसी एक इंसान को जेन्युइनली बोल दीजिए थैंक यू। क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा ना बिग अचीवमेंट से नहीं आती, कभी कभी एक पीसफुल मॉर्निंग और एक कप चाय भी काफी होती है। और दोस्तों, देखते ही देखते हम आ गए हैं अपनी मॉर्निंग शो के लास्ट फ्यू मिनट्स में। थैंक यू सो मच ब्रिस्बेन। आप घर पर है, ऑफिस में है, स्कूल पर है, ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर अपनी मॉर्निंग वॉक पर है, रेडियो ब्रिस्बेन को अपनी मॉर्निंग का पार्ट बनाने के लिए थैंक यू सो मच। आज का रिमाइंडर याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज स्टिल प्रोग्रेस। जी हाँ, आज अगर सिर्फ एक स्टेप भी आगे बढ़े तो वो भी प्रोग्रेस है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, जहाँ पे शो चल रहा था चांदनी का सफर। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, और अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा काइंडनेस जरूर छोड़िए। बनिए एंड वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वाला मॉर्निंग ब्रिस्बेन। हैव अ ब्यूटीफुल थर्सडे। मिलते हैं फिर सेम फ्रिक्वेंसी, सेम सिटी और एनर्जी के साथ। सो दिस इज रेडियो ब्रिस्बेन साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चिनफिंग के बीमार होने की अटकलें तेज। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की तबीयत को लेकर अक्सर कई तरह की खबरें सामने आती हैं। अब एक बार फिर शी चिनफिंग की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। शी चिनफिंग 12 और 13 सितंबर के बीच भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे। वो नई दिल्ली में एक दिन ही रुके। इस बात को लेकर भी चिनफिंग के आलोचक सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मीटिंग के दौरान भी चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग से पूछा था, क्या सब ठीक है? गाजा में बमबारी के बाद गिरी 7 मंजिला इमारत, 20 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा मलबे में दबे। गाजा शहर में रात भर बम धमाके होते रहे, जिसके बाद 7 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई। इस हादसे में मलबे में दबकर 20 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें 5 बच्चे हैं। 7 मंजिला ये इमारत तल अल हवा इलाके में गिरी। मलबे के नीचे अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बिल्डिंग में करीब 10 परिवार रह रहे थे। इमारत गिरने से 14 लोग घायल हो गए, जबकि बचाव कर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे रहे। सालों तक हूती को यमन की समस्या मानता था सऊदी, आज उन्हीं के दरवाजे तक पहुंच गई चिंगारी। सऊदी अरब ने मक्का शहर के पास पहुंचने से पहले ही यमन के हूती विद्रोहियों के एक ड्रोन को हवा में ही मार दिया। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो हालात इतने बिगड़ जाते कि पूरी दुनिया इस जंग में कूद सकती थी। फैसले वापस लेने का सवाल ही नहीं। UPI चार्ज पर सरकार ने क्लियर किया स्टैंड, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार की तरफ से UPI को लेकर नए फ्रेमवर्क को बनाया गया है, जिसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाना है। सरकार के इस कदम के बाद से विपक्ष फैसले को वापस लेने का दबाव बना रहा है। इसी को लेकर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा कि UPI ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। जब यह फैसला लिया जा चुका है तो उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। UPI चार्ज पर विदेशी दबाव के आरोप खारिज, केंद्र ने MDR को लेकर स्थिति की स्पष्ट। UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने को लेकर विपक्ष के विदेशी दबाव वाले आरोपों का केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि ये फैसला विदेशी दबाव में नहीं लिया गया है। UPI से जुड़े फैसले भारत सरकार अपने लेवल पर करती है और इनका विदेशी दबाव से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। नए चार्जेस लगाने का सरकार का उद्देश्य सिर्फ डिजिटल पेमेंट को आत्मनिर्भर और आसान बनाना है। मंत्रालय की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, कैसे हैं आप सब? हाँ भाई, देखिए जिंदगी तो ले आई आपके लिए एक नई सुबह, एक नया ख्याल, एक नया मौका, लेकिन आप इस मौके को जीने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप आज जिंदगी के साथ मुस्कुराने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि ये जिंदगी तो आपके लिए मुस्कुरा रही है। एंड आई होप कि आप भी बिल्कुल रेडी होंगे आज के सपनों को, आज के अरमानों को, आज के वक्त को जीने के लिए। तो फिर चलिए, देर किस बात की है। मैं सताक्षी हूं ना आपके साथ, और मेरे साथ है बॉलीवुड के कई ऐसे गाने जो इस वक्त को खास बना देंगे, आपकी मॉर्निंग को आपके लिए खास बना देंगे। और शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। Keep listening to Radio Brismani 1701 AM, सताक्षी के साथ सुनते रहिए Happens।

मॉर्निंग एक बार फिर से आपको उन सबको जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इट हैपेंस आप एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में ये वक्त है उन्हें विश करने का जिनके लिए आज बहुत ही खास दिन है और बहुत सारी विशेष उनको आ रही हैं। जी हाँ, जिनका आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उन सबको, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, हम विश करते हैं कि ये दिन जो है आपकी जिंदगी का बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल दिन रहे और आपको ढेर सारी विशेष, ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारी दुआएं मिले। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और बस यार, मतलब आपके लिए सिर्फ एक ही दुआ निकलती है कि आज के टाइम में तो बस जिंदगी भर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ बना रहे, वो प्यार, वो मोहब्बत बनी रहे, इससे बड़ी कोई और विश नहीं हो सकती है ना। तो ये प्यार यूं ही बना रहे। रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी की आपके लिए यही विशेष है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे है उनसे कहेंगे कि भाई हमारे स्टूडियो में हमारे लिए भी केक भेज दीजिएगा, है ना, हम भी आपकी पार्टी का हिस्सा है, सो ट्रीट हमारी भी बनती है। इसी बात पर एक और ट्रैक आपके नाम। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

छापन एंजॉय कर अब सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। कभी कभी खुद से एक बात पूछने की या खुद से बात करने की बहुत जरूरत होती है। देखा जाए बेसिकली तो हम सब दिन भर किसी ना किसी दौड़ में लगे रहते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन रात होते होते हम थक कर चुपचाप सो जाते हैं और फिर अगला दिन उसी रफ्तार से शुरू हो जाता है। पर इसी तेज रफ्तार में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं दोस्तों, और यही आता है रिफ्लेक्शन, यानी कि सोचने का वक्त, खुद के बारे में सोचना। जब हम एक छोटा सा ठहराव, एक छोटा सा पॉज अपनी लाइफ में फील करते हैं ना, तब हम वहां पर खुद से बात करते हैं, खुद को समझते हैं। ये कोई एक दूसरे के साथ, यानी कि आपसे और आपके मन से आपका कोई आर्गुमेंट नहीं है, बल्कि ये बात जो है ये दिल से दिल तक की होती है, आपको अपने ही मन को समझने की होती है। और ये सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का भी आपको खुद को दिया गया समय हो सकता है जिसमें आप खुद को समझ पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद के लिए हर रोज ऐसा वक्त हमें जरूर निकालना है जहां पर हम खुद के साथ ये बात कर सके, क्या चल रहा है हमारे मन में, क्या हम चाहते हैं इस बात पर गौर कर सके। एक और ट्रैक इसी बात पर सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

बेसमानी 1701 एम पर दोस्तों आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस। जी हाँ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। साइलेंस, ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में अक्सर एक ऐसा थॉट आता है जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, है ना, या फिर ये बात आती है कि यार एक शांत कमरा हो जहाँ पर हम अकेले बैठे हो, और या फिर जंगल की खामोशी हो, मतलब कोई भी दूर दूर तक नजर ना आए जिससे हम बात कर सकें, तभी तो हम शांत रह सकते हैं, वरना तो हम बात ही करते रहेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शांत होना या मौन होना सिर्फ बाहरी आवाजों का रुक जाना नहीं है कि आपको कोई आवाज ना आए, है ना। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ आप एक ऐसे दरवाजे के अंदर खुद को पाते हैं जहाँ बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और आपके अंदर का दरवाजा, आपके मन के अंदर का दरवाजा जो है वो खुल जाता है। ये वो जगह है जहाँ आप हजारों थॉट्स के बीच खुद को पाते हैं। आपका दिल क्या चाहता है, आपके मन में कौन कौन सी यादें आ रही हैं, कौन कौन से मोमेंट्स आपको याद आ रहे हैं, आप इन सारे थॉट्स के बीच खुद को पाते हैं। यू नो, जब भी आप फोन पर होते हैं, आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो बेसिकली ये सारे थॉट्स जो हैं, या आप लोगों से जब बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे थॉट्स आप दबा कर रखते हैं अपने मन में। लेकिन जब आप साइलेंस में बैठते हैं तो आप अपने मन के थॉट्स से, अपने मन के विचारों से आप भागते नहीं हैं, बल्कि उनके सामने बैठकर आप उन्हें सुनते हैं। तो बेसिकली साइलेंस का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, खामोश हो जाना नहीं है। साइलेंस का मतलब है खुद के साथ बातचीत करना, खुद को वक्त देना, खुद को समझना। तो जरूर खुद के साथ आपका जो साइलेंस का प्रोसेस है या जो खुद के साथ आपकी बातचीत है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। एक और ट्रैक के साथ अभी हम और आप भी आगे बढ़ते हैं, इंजॉय कीजिए इसे।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस।
2: बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
6: है। हैपेंस में आप हैं सताक्षी के साथ, और ये है वक्त गानों की हैट्रिक का। आज 3 बैक टू बैक ट्रैक्स आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो आज गानों की हैट्रिक का पहला ट्रैक कौन सा है, आइए सुनिए मेरे साथ।

गानों की हैट्रिक रितु प्रस्वानी पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गानों की हैट्रिक में, ये आज का लास्ट ट्रैक। और अभी इट हैपेंस में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको सुनवाए जाएंगे, सो कीप लिसनिंग टू रितु प्रस्वानी, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

अच्छा, कई बार ना जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने आपसे भी कहा है कि यार मेडिटेशन जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेट जब आप करते हैं तो आप खुद की बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं, है ना। आप खुद के मन को रिचार्ज करते हैं, आप बाहर का जो भी लोगों का आपके लिए बिहेवियर है आप उसे टॉलरेट करने के लायक खुद को बनाते हैं। बट अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि हमने आंखें बंद की और बस हम एक पीसफुल स्टेट में आ गए। देखिए, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बेसिकली अपने आप के साथ गलत कर रहे हो और आप अपने आप को एक गलत सोच में लेकर जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि मेडिटेशन जो है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस की स्टेज है। जब भी आप पहली बार मेडिटेट करने बैठेंगे ना, तो आप एक, मैं कहूँ ना, तो एक अशांत बंदर जैसे, जिसपे पहले एक थॉट कूदेगा, फिर दूसरा भी कूदेगा, फिर तीसरा भी कूदेगा, आप कई सारे थॉट से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। और इसीलिए मैंने देखा है, क्योंकि जब लोग शांत नहीं होते ना तो वो मेडिटेट करना छोड़ देते हैं। बट ये स्टेज है जहां आप धीरे धीरे अपने आप को एक साइलेंस में ला पाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस। कभी कभी ये प्रैक्टिस एक हफ्ते की हो सकती है, एक महीने की, या फिर एक साल की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर थॉट प्रोसेस कितना है। ये कोई बटन नहीं है कि दबाया और हम शांत हो गए, हम मेडिटेट की स्टेट में चले गए। तो मेडिटेशन की बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस प्रैक्टिस के बिना इस खेल को छोड़ देंगे, तो बहुत गलत है ना। एक और ट्राई कभी मेरे साथ सुनिए इसी बात पर, और सुनते रहिए ठापन्स रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एफएम पर।

मॉर्निंग का टाइम है तो बात कर ली जाए एनर्जी पर। जी हाँ, एनर्जी जो है वो सिर्फ काम के लिए नहीं होती है, एनर्जी जो है वो फोकस के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उस काम में मन नहीं लग रहा, डैट मीन्स कि फोकस की कमी है, और फोकस की कमी इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी की कमी है। एनर्जी बेसिकली हमारे फोकस को बनाए रखने का सबसे अच्छा मीडियम है, सबसे अच्छा सोर्स है। और ये एनर्जी तब मिलती है जब आप बढ़िया खाते हैं, बढ़िया सोते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और मुझे पता है कि आप इतने बिजी हैं कि आप इन तीनों से ही भाग रहे हैं, तो बॉस ऐसा मत कीजिए। एक्सरसाइज पर थोड़ा फोकस कीजिए, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने दिन को जो है वो बढ़िया बनाइए, फोकस करना सीखिए। जब आप एनर्जी अच्छी देंगे अपने शरीर को तो वो आपके फोकस पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, फिर आप अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ हैं।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।